बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।

0: बेस्ट प्रोडक्ट कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम चैक ये बेला बिहार को 9 बजे को

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक यति बेला बिहान को 10 बजे को

0: गंगा रेडियो मेरो एवरेस्ट
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: मैगर कपिलाहुको आफ्नो कुमार र सुगर गीत धेरैलाई अत्रा बेला आफ्नो कुरा सुन्टी भाटी रिदी मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्जको कार्यक्रम आफ्नो कावा सुन्टी भाटी हाम्रो प्रत्येक बिहिबारको दिन ऐना गर्थे। करिब करिब हाम्रो 2 बजेको मध्य पश्चिम हाइलाइट छ छ करिब करिब 3 बजेसम्म रहना गर्थे। आफ्नो कुनै कार्यक्रम आफ्नो आवाज हो आफ्नो ग्रह कार्यक्रममा आकन आफ्नो प्रतिभा सुनाइसक्ने बाटी 082-560-854 नम्बर डायल गरिकन जान्छ। 1-2 हप्ता चाहिँ ग्याप हुल के सँगै हाम्रा सम्पर्कमा आशाकलबाट उहाँ स्वागत गर्दारी। हेलो राम राम।
1: हेलो दाजु राम राम।
0: राम राम कहाँ से के बोल्ले?
1: बन्जाडी
0: से प्रकृति चौधरी।
1: हजुर
0: प्रकृति के हाल खबर काबा?
1: ठीक
0: बा
1: दाजु।
0: सब कुछ ठीक बाटी
1: चल घर हमार
0: ढेर दिन पास समझली। आजकल पढ़ाई सारे कहर पुगल
1: पढ़ाई पढ़ती
0: कठे कई में पुगली हूँ
1: सेकेंड ईयर
0: बैचलर हो ना।
1: हजुर
0: ठीक बा मजा से पढ़ दी कार्यक्रम सुनती बाटी अखि बंजारी के मौसम कसिन बा
1: पानी नाश करता दाजु
0: पानी नाश गर्दा भारी वर्षा हुना कना मौसम पूर्वानुमान करगिल बाका हुना ठिक बा मलाई से सजगता आफ्नै दि कार्यक्रममा सम्झल बाटी का सुनाइ इतिहास
1: गीत सुनाइ दे दादु
0: ल सुरु गरी

मैगरको बिलाहुङ रोपनक माझमा हाम्रो सुघर दशैं सम्बन्धी गीत धैरखलाई दान्से यी दशैं गीत सुनकन जति सोचो दशैं आगिल पुस्त महसुस हुई पुख फिर हारङ्गी थुलिकन पूर्ण विश्वासले हेलबाटी अत्र बेला आफ्नो कुरा सुन्टीबाटी रिरी मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्जको कार्यक्रम अपना आवाज सुन्टीबाटी हाम्रो प्रत्येक बिहिबारको दिन हैन गर्थे 2 बजेको मध्यपश्चिम पाछ करिब करिब 3 बजेसम्म हाम्रो यात्रा रहने कर्था अपना उग्र रेडियो मध्यपश्चिम यदि इन्टरनेट के पहुँच बाटिकल से अपना उग्र www.radioMP.org लगिन के फे सुन सकथे उस तरह का मोबाइल एप्लीकेशन हाम्रो पात्र मसे फे अपना सुन सकथे हाम्रो यी कार्यक्रम हाम्रो फेसबुक मसे रेडियो के फेसबुक मसे फे अपना माझमा हाम्रो लाइभ फेकरल बाटी वहाँ से फे अपना उग्र सुन सक्ने बाटी अपना नेपाली में रेडियो मध्यपश्चिम टाइप कर्बिकल से फे वहाँ से फे अपना उग्र सुन या सिक्ने बाटी आइसक्ने बाटी 082-568-8754 नम्बर डायल कैकन अत्र बेला शान्त कुमार बुढा महिन प्राविधिक रूपमा साथ देतीबाट पक्कफी यहाँ हाम्रा सुगर सुगर गीत बाजफे हाम्रा सुनिटी बाटी पक्कफी हाम्रा थारूङ्क्र थारू कलाले थारू गीत संगीतले थारू साहित्यले हाम्रो धीरधनी बाटी हाम्रा चाड पर्व अनुसार दशैंमा गीत गिना छुट्टै तरिका छुट्टै र बाकलसे माघमा चाड पर्व अनुसारमा छुट्टै छुट्टै ओ मौसम अनुसार फेरि हाम्रा गीत संगीत गीत गिना रहलबा ओमा राम्रो फे गीत संगीतले फे धीर धनी फे बाटी आइसक्ने बाटी 082-568-8754 नम्बर डायल किकन अत्र बेला एक फेर सुगर गीत धरसाटी गीत पाछ आफ्नो माझमा हाम्रो फेर उपस्थित हुने बाटी

मयूर का विलहम अपना कमाज में ये गीत धरती धरती आप हमारा कार्यक्रम के पुच्छार हो फे आज सकल बाटी आप हमारा विदा होकर जाय पर्ना बैठा आज चाहिए एक जहन सेकल हमारा बातचीत कर पैली प्रतिभा सुन पैले एक जहन सेकल बंजारी से समझल रही प्रकृति चौधरी प्रकृति चौधरी आए रही वहां का प्रतिभा के लास हम सुन पैली तर आगामी दिन में फिर हम धीर से धीर संग रेन के हम प्रतिभा सुन पैने बाटिकन विश्वास लिहल बाटी ऐना दिन पक्की समझबी सहभागिता जनाली बी ठीक बा आज हम विदा होकर जाय पर्ना बैठा प्रकृति चौधरी विजेता बंद्रकले अपना प्राप्त करल बाटी स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्स के तर्फ से जीवन चौधरी के तर्फ से एक कार्टून पानी प्राप्त करखली उस तरह का 100 रुपये के रिचार्ज कार्ड प्राप्त करखली अपना एक हफ्ता भीतर रेडियो मध्य पश्चिम कार्यालय में संपर्क कर भी उठा था अत्र बेलासम कार्यक्रम सुन का साथ दिली सबको मई घर कविला नकला धन्यवाद उस तरह का पानी उपलब्ध करा दे जीवन चौधरी अपना क्ला फे धीर धीर धन्यवाद भेटू उस तरह का अत्र बेलासम प्राविधिक रूप में साथ दिला शांत कुमार बुढ़ा मगर अपना क्ला फे धीर धीर धन्यवाद देती मैं शारिक राम चौधरी एक हफ्ता क्लाक मैं विदा हुई चाहू राम राम।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बाढ़ी पहिरो तथा डुबान जस्ता मनसूनजन्य विपत्ति हुइसकना जनधनको क्षति न्यूनीकरण एवं खोज तथा उद्धारका लागि देशभर 11,700 बढ़ी जनशक्ति उच्च सतर्कता साथ परिचालन अवस्थामा धरलग जना राखल 650 ठो सम्भावित जोखिममुक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी से मनसूनजन्य प्राकृतिक विपदको जोखिम हुन ध्यानमा धरती देशभर व्यापक पूर्व तयारी तथा परिचालन योजना तयारी गरिकन कार्यान्वयन आन राखल उस्ताका थप जनशक्ति उद्धार सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन समेत गरिराखल जकर अन्तर्गत 2060 जनविपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त जनशक्ति उस्ताक 133 जन गोताखोर ओ 224 जन रोप रेस्क्यू लगायत उच्च भूभाग खोज तथा उद्धार तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा खटलबाट जोखिममुक्त क्षेत्रमा विपर्सित सड़क अवरोध हुइलसे तत्काल हटाइएका वा खुलाइएका तथा हेभी रेस्क्यूको लागि विपद जोखिम युक्त नदी करिडोर ओ प्रदेश स्थित वाहिनी मुख्यालयमा व्हील लोडर क्रेन ओ एक्सकाभेटर जस्ता हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा धर्किल्बा। भारी वर्षाको सम्भावना हुन मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङसे जिल्लाका विभिन्न 5 सड़क खण्डमा सवारी आवागमन बन्द गर्न निर्णय गरिराखल। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एवं नेपाल मौसम विज्ञान विभागको सूचना अनुसार असोज 8 गते से 11 गतेसम्म भारी से अति भारी वर्षाको सम्भावना रहल खोर्से हरेक दिन सन्ध्या 5 बजे से बिहान 6 बजेसम्म सवारी आवागमन बन्द गर्जिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ जना राखल। बन्द हुना सड़क खण्डमा राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुर कपुरकोट सड़क खण्ड भालुबाङ चकचके सड़क खण्ड अन्तर्गत भालुबाङ से गनाहा खोल्वासम्म शहीद मार्ग अन्तर्गत घोराई होलेरी सड़क खण्ड घोराई मुर्कुटी सड़क खण्ड ओतु तुलसीपुर सुर्खेत सड़क खण्ड अन्तर्गत तुलसीपुर से कालीमाटीसम्म रहलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय से सम्भावित विपदको जोखिम हुन ध्यानमा धर्ती सम्बन्धित सबकुजहनलाई आवश्यक सावधानी अपनाएकला आग्रह गरिराखल। भारी वर्षाको सम्भावना रहलपा छ। दाङको देउखुरी स्थित राप्ती लड्डेको तटीय क्षेत्रमा निर्जाइकला सशस्त्र प्रहरीसे माइकिङ मार्फत सर्वसाधारण हुन आग्रह गरिराखल। मौसम पूर्वानुमान महाशाखासे असोज 9 गते से 11 गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको कुछ स्थानमा भारी से धिउर भारी वर्षा तथा एक दुई स्थानमा अति भारी वर्षा हुइसक्न पूर्वानुमान गरलपा छ। सुरक्षा निकायसे जोखिम मुक्त क्षेत्रमा सतर्कता बढ़ागिलक हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 19 हेडक्वार्टर ज्वालामाई गण भालुबाङ से राप्ती लद्दे तटीय क्षेत्रमा पुगन माइकिङ कर्ती लद्दे किनारमा निजैक्ला जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निवेशकला ओ सुरक्षित स्थानमा रह आग्रह कर्लक गणका प्रमुख एसपी एदु कार्की जानकारी दिएरखल। उहाँका अनुसार डीएसपी बाबुराम थापाको कमाण्डमा खटगिलक टोलीसे लद्दे तटीय क्षेत्रमा पुगन सचेतनामूलक माइकिङ कर्लक हो। लद्देमा पानीको बहाव बहरलक पानी धमिलो हुइलक ढुङ्गा तथा रूखुवा बहते ऐलक्ष्य वा असामान्य आवाज सुनगिलसे तत्काल ध्यान ओ सुरक्षित स्थानमा जाइकला सर्वसाधारण हुन आग्रह गरिलक उहाँ बटुवा रखल। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङसे बाढ़ी पहिरो डुबान ओ कटानको सम्भावित जोखिम हुन ध्यानमा धर्ती सक्कु सुरक्षा निकाय स्थानीय तह तथा सरकारवाला निकाय हुन तयारी अवस्थामा रह निर्देशन दिएरखल। लुम्बिनी प्रदेशमा असोज 9 गते से 11 गतेसम्म मेघगर्जन चट्याङ ओ हावाहरी सहित धिउर वर्षा तथा कुछ स्थानमा अति भारी वर्षा हुइसकना पूर्वानुमान पाछ। प्रदेश सरकारसे उच्च सतर्कता अप्नाइला आग्रह गरिराखल। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसे बुधबार अपील जारी गर्दै सम्भावित भारी वर्षाको कारण बाढ़ी पहिरो भूछे गेग्रान बहाव तथा तराई ओ शहरी क्षेत्रमा डुबानको जोखिम बढ़सेकना हुइल खोर्से प्रदेशवासी हुन सतर्क रह आग्रह गर्ल हुइट। उहाँसे भारी वर्षाको कारण नदी खोल्वा तथा नालामा पानीको सतह बहरना उस्ताको सड़क तथा यातायात प्रभावित हुइसेकना हुइल खोर्से जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष सावधानी अप्नाएकला आग्रह गरिरखल। मुख्यमन्त्री आचार्यसे नदी तथा खोल्वा किनार पहिरोको जोखिम रलक बस्ती तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न नागरिक
स्थानीय प्रशासन ओ सम्बन्धित निकायसे जारी हुन सूचना तथा निर्देशन पालना गर अनुरोध गरिरहल। उहाँसे धानबाली भित्रिना समय रल खुण्से किसान हन मौसमको अवस्था हेरकन कृषि विज्ञको सल्लाह अनुसार आवश्यक तयारी गरफे आग्रह गरिरहल। वर्षाको समयमा जोखिम मोलकन खेतबारीमा काम निकर ओ सम्भव हुसम्म अन्न बाली सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर उहाँ सुझाव दिइरहल। मुख्यमन्त्री आचार्य सम्भावित विपद हन ध्यानमा धरती प्रदेश सरकार स्थानीय तह ओ सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारवाला निकाय हन पूर्व तयारी उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रह निर्देशन देखिलक बटुवा रखल। ओ मानव अधिकार तथा बाल अधिकारका संरक्षणमा क्रियाशील संघ संस्था तथा नागरिक सञ्जालका प्रतिनिधि कनक्से भोटेकोसी बाढीसे पार्श्वती विपद पूर्व तयारी उद्धार राहत पुनर्स्थापना तथा प्रभावितको संरक्षण हन प्रभावकारी बनाई पर्नामा जोड़ दिइरहल। जलवायु परिवर्तनको कारण भर्ती गेलक विपदको जोखिम न्यूनीकरणसँग विपदको समयमा मानव अधिकारको संरक्षण ओ परिवर्तनको लागि जलवायु शासन हन प्रभावकारी बनाई पर्ना उहाँको कहाँबाटिन। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च मानव अधिकार एलायन्स ओ जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल लगायत संस्थाको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा हुइलक जलवायु न्याय ओ मानव अधिकार विषयक संवादमा सहभागी से विपद व्यवस्थापन हन अधिकारमुखी बनाई पर्नामा जोर देलक हुइट। भोटेकोसी बाढी शैलक मानवीय भौतिक तथा क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सहभागी हुनको नक्सी विपत्ताको खोजी परिवार पुनर्मिलन राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम हुन प्रभावकारी बनाई पर्नामा जोड़ दिइरहल। मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीसे भारी देशका गतिविधिको असर नेपाल जस्ता मुलुकसे भाग पर्ल कति जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी पैरवी आवश्यक रहल बटुवा रहल। हुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अतरह कालसंजाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबरमा से समाचार कक्ष कसकु संग्रहसँग मैशालिक राम चौधरी विदाई टू रिरी मध्यपश्चिम उन्टी रवि राम राम।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्की
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने दाँत फाल्ने नयाँ दाँत राख्ने दाँत सफा गर्ने चम्किलो बनाउने बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-794, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चॉइस ओटोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।